0: वसंत ऋतु को आगमन संगे नव वर्ष को पावन अवसर में हमी हमारा संपूर्ण उद्योगी व्यापारी ग्राहक वर्ग बुद्धिजीवी कर्मचारी शिक्षक विद्यार्थी सुरक्षा कर्मी संचार कर्मी पत्रकार खिलाड़ी लगायत संपूर्ण स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरूलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तर उत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: बुद्ध सुन चाँदी पसल रोल्पा नगरपालिका दुई बीच बजार लिबाङ रोल्पा।
0: हामी कहाँ आधुनिक तथा पुराना डिजाइन का गरगहना ग्यारेन्टी का साथ तैयार गरिन्छ। प्रोप्राइटर तिलक रसाइली। मोबाइल नम्बर 9861329593 र 9811935935।
2: नयाँ वर्षको
0: वसंत ऋतु को आगमन संगे नव वर्ष को पावन अवसर में हमी हमारा संपूर्ण उद्योगी व्यापारी ग्राहक वर्ग बुद्धिजीवी कर्मचारी शिक्षक विद्यार्थी सुरक्षा कर्मी संचार कर्मी पत्रकार खिलाड़ी लगायत संपूर्ण स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरूलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तर उत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: राम ओक सब एन्ड रिकन्डिसन हाउस रोल्पा नगरपालिका 4 पधेरी खोला रोल्पा।
0: हाम्रा सेवाहरू हामी कहाँ बाइक मर्मत तथा बाइक खरिद बिक्री गरिनुका साथै सम्पूर्ण पार्ट्सहरू होलसेलमा पाइन्छ। प्रोप्राइटर रामकुमार केसी। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9862468710 र 9862620985। एक पटक होइन पटक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। वसंत ऋतु को आगमन संगे नव वर्ष को पावन अवसर में हमी हमारा संपूर्ण उद्योगी व्यापारी ग्राहक वर्ग बुद्धिजीवी कर्मचारी शिक्षक विद्यार्थी सुरक्षा कर्मी संचार कर्मी पत्रकार खिलाड़ी लगायत संपूर्ण स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरूलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तर उत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं।
1: ऋतु तन्दुरी होटल रोल्पा नगरपालिका 4 बीच बजार रोल्पा।
0: हजुर, हाम्रा सेवाहरू स्वच्छ खाना बस्नका साथै नास्ताका परिकारहरू मोमो चाउमिन आलु परौठा समोसा छोले तन्दुरी रोटी आदि पाइन्छ। प्रोप्राइटर नरबहादुर राणा। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9849503394।
2: नयाँ वर्षको
0: वसंत ऋतु को आगमन संगे नव वर्ष को पावन अवसर में हमी हमारा संपूर्ण उद्योगी व्यापारी ग्राहक वर्ग बुद्धिजीवी कर्मचारी शिक्षक विद्यार्थी सुरक्षा कर्मी संचार कर्मी पत्रकार खिलाड़ी लगायत संपूर्ण स्वदेश तथा विदेश में रहनु भएका नेपाली आमा बुबा दाजुभाई तथा दीदी बहिनीहरूलाई सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तर उत्तर प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभ कामना व्यक्त गर्दछौं।
1: श्री लुम्बिनी सुन चाँदी पसल रोल्पा नगरपालिका 4 लिबाङ रोल्पा।
0: हजुर, हामी कहाँ आधुनिक तथा पुराना डिजाइन का गरगहना ग्यारेन्टी का साथ तैयार गरिन्छ। आभूषण को विश्वासिलो सुन चाँदी पसल श्री लुम्बिनी सुन चाँदी पसल। प्रोप्राइटर राजेश जुरी। सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9844900472 र 9905969298।
3: वसंत ऋतु को हरियाली पहाड़ संगे भित्रिएको नव वर्ष 2083 साल को हर्ष उल्लासमय इस पावन अवसर में हमी हमारा संपूर्ण ग्राहक वर्ग व्यापारी बुद्धिजीवी जनप्रतिनिधि राजनीतिक दल नागरिक समाज विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय पत्रकार सुरक्षा कर्मी आमा समूह युवा क्लब साहित्यकार शिक्षक विद्यार्थी लगायत देश तथा विदेश में रहनु भएका संपूर्ण महानुभावहरूमा सुख शांति समृद्धि दीर्घायु एवं प्रगति को हार्दिक मंगलमय शुभ कामना व्यक्त गर्दछौ।
4: हरी कैफे कर्मा रोल्पा नगरपालिका चार टुली खेल लिबांग रोल्पा। हामी कहाँ अर्डर अनुसार विभिन्न किसिम का केक लस्सी चिया कफी दही आदि पाउनु का साथ ही होम डिलीवरी को व्यवस्था समेत रहेको छ।
5: प्रोप्राइटर हरी डागी संपर्क मोबाइल नंबर 98674052।
4: हरी कैफे कर्मा रोल्पा नगरपालिका चार टुली खेल लिबांग रोल्पा।